0: Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001233774 core.org.uk।
2: Juggling too much, trying to keep it all together without losing your mind, you deserve some me time. Join me, Neelam, on Mother's Planet every Friday at 10 o'clock on air at 105.1 FM or via our Inspire FM Facebook page. I'll be sharing tips and discussions with my guests on topics from kids, what to cook, health, well-being and lots more for all you special mums. That's Mother's Planet every Friday from 10 a.m. only at Inspire FM 105.1 FM.
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:30.
4: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
5: A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim.
6: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ इंस्पायर FM, द टाइम इज नाउ 6 o'clock।

0: This show is sponsored by Halima Limited. Embark on a sacred journey with Halima Limited, your trusted local agent in Bury Park with 15 plus years of experience. Exclusive Hajj and Umrah packages for Pakistani passport holders partnered with Saudi Hajj Company. We ensure a smooth, comfortable and spiritually fulfilling experience under the guidance of Sheikh Zubair Akbar. We handle all the details, including your Nusak Hajj application, so you can focus on your devotion. Book today. Call 01582-343-075 or visit www.halima.co.uk.
1: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है। आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं और फिर जोनसा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं। ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
2: From the heart of Bedfordshire in Luton, this is Inspire FM. I have

0: और क्या इन लोगों को ये सुझाई नहीं देता कि जिस खुदा ने ये जमीन और आसमान पैदा किए हैं और इनको बनाते हुए जो ना थका वो जरूर इस पर कादिर है कि मुर्दों को जिला उठाए। क्यों नहीं, यकीनन वो हर चीज की कुदरत रखता है।
1: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا

ले आओ बिसूरतन, कोई सूरत में मिसली ही इसकी मानित, इस सूरत जैसी कोई सूरत तुम भी बना लाओ अगर तुम समझते हो कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं। और आपको मालूम है कि अरबों के पास एक ही चीज थी और वो थी अरबी दानी, कलाम जानना। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू का बहुत जोर था, अल्लाह ने उनको ऐसे मौजज़े दिए जिससे जादू का तोड़ हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब का बहुत जोर था, अल्लाह सुबहान तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को वो मौजज़ात दिए जिससे तिब का मुकाबला हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरबों के पास न जादू था न तिब थी, क्या था? ज़बान, ज़बान के माहिर थे। अल्लाह ने ऐसा कलाम उतारा कि उनको बेज़बान कर दिया। तो इसीलिए चैलेंज किया जा रहा है, अगर तुम कहते हो कि ये किताब अल्लाह ने नहीं भेजी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिख ली है, तो क्या करो? इस जैसी एक सूरत ले आओ। सूरत यूनुस में आता है फतु बिसूरतिन मिसली, इसकी मानिंद एक सूरत लाओ। सूरत हूद में आता है फतु बिआशरि सूवर मिसली, इस जैसी 10 सूरतें ले आओ। सूरत बनी इसराइल में आता है अलायतु बिमिसलि हाज़ल कुरआन, इस कुरान जैसा ले आओ। सूरत तूर में आता है फलियतु बिहदीसिन मिसली, इस बात जैसी कोई बात ले आओ, लेकिन ऐसी कोई चीज़ वो न बना सके, कुछ भी न ला सके। और लोगों ने कोशिशें भी की लेकिन कोई भी कुरान जैसी चीज़ न ला सका, क्योंकि इसके अंदर जो अल्फाज का इंतखाब है और जो तरतीब है और जो इसका स्टाइल है और जो तरकीब है और जो इसके अंदर आपस का रब्त है और जो इसमें पेशन गोइयाँ हैं और जो अहकामात हैं और जो खूबसूरती है कि पढ़ पढ़ के इंसान का दिल नहीं भरता, और जो इसके अंदर एक नगमगी है, यानी जब इसको पढ़ा जाता है तो दिल के तारों को छेड़ देता है, सुना जाए तो भी लुत्फ देता है। कोई किताब एक से दूसरी मर्तबा पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन कुरान जितनी दफ़ा पढ़ो कम है, हर दफ़ा नया मतलब समझ आता है, नए नए उकदे खुलते, नई नई चीज़ें सामने आती, और दिल है कि भरता ही नहीं। तो इसलिए उनको चैलेंज किया गया कि तुम भी इस किताब जैसी कोई चीज़ लाओ। वदू शुहदा अकुम, और बुला लो अपने गवाहों को, अपने मददगारों को, अपने सपोर्टर्स को भी बुला लो, खुद नहीं काम कर सकते औरों को भी ले आओ। या ये है कि बहुत से अपने सपोर्टर्स इकट्ठे कर लो, हाजरीन को जमा कर लो, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिस जिस को चाहो अपनी मदद के लिए बुला लो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, किस बात में? अपने इस दावे में। कौन सा दावा? कि ये किताब अल्लाह की तरफ से नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद घड़ ली, क्योंकि वो कहते थे ना हम यकूलून अफ्तरा, या वो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको घड़ लिया। कुल फातु बिसूरतिन मिस्ली, अगर तुम ये समझते हो तो इस जैसी एक सूरत लेकर आओ। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, फइन लम तफअलू, फिर अगर तुम न कर सको, क्या न कर सको? इस जैसी कोई सूरत बनाने का काम। वलन तफालू, और साथ ही फरमा दिया हरगिज कर भी ना सकोगे। सूरत बनी इसराइल में इसके बारे में आता है कि खा तुम सब एक दूसरे के मददगार बन जाओ तो भी ये नहीं कर सकोगे। ला यातून बिमिस्लिही वलौ कान बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, सब एक दूसरे को सपोर्ट दें तब भी ऐसी कोई किताब नहीं ला सकते, तो फिर क्या करो? बाज आ जाओ इसकी मुखालफत से, इसके इनकार से। फत्तकुन्नार, आग से डरो, आग से डरो। कौन सी आग? जहन्नम की आग। अल्लती, वो जो, वकूदुहा, उसका ईंधन, फ्यूल, अन्नास, लोग हैं, वल हिजारा, और पत्थर। वो आग जलाई जाएगी, भड़काई जाएगी, किससे? इंसानों और पत्थरों से। पत्थरों की आग बहुत शदीद आग होती, और खुद इंसान उसमें बतौर फ्यूल काम करेंगे। अब इंसानों के जिस्म में क्या है? बाल। कैसे जलते हैं बाल? तेज़ी के साथ। इंसान के अंदर फैट है, चर्बी। चर्बी कैसे जलती? आग जलती है ना तेल से, जैसे पहले ज़माने दिए होते थे तो उसको तेल में डुबो के रख देते थे, तो देर तक जलता रहता है। तो फ्यूल क्या है? वो तेल होता है ना फ्यूल। अब भी क्या, आपकी गाड़ियाँ किससे चलती? तेल से।
تو انسان کے

0: कि चीनी ले जाए यहाँ से, आप भूल चुकी होंगी और आप कहें मैं भूल जाऊंगा ये चीनी जो आपने मेरे सामने रखी है, और आपने मुझे कहना है आप वो चीनी भूल जाएं जो मैंने केक में ठूंसी है। तो ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि केक फैट फ्री या शुगर फ्री या फलां फ्री चाहिए, केक जैसा होगा वैसा खाएंगे, क्योंकि उसमें मेरा कंट्रोल नहीं है, वो अनकंट्रोलेबल है मेरे लिए। लेकिन मेरा कंट्रोल उस चीनी पे ज़रूर है जो अभी मैं चम्मच से डाले जा रहा हूँ, तो उसकी जगह मैं खजूर ले लूँगा, और अगर नहीं मिला तो मीठा है केक पहले से, उसके साथ चाय पी लेंगे।
1: अच्छा, नहीं तो बिल्कुल वैसे ही, जैसे हॉस्पिटल में मेरी गायनी में जॉब होती थी, तो जो लेडीज डिलीवरी हो जाती थी तो फिर वो खाना ऑर्डर करती थी, तो इतना लंबा लिस्ट खाने को, और आखिर में डाइट डाइट वाला कोक चाहिए साथ में, या डाइट वाला शुगर फ्री ड्रिंक चाहिए।
0: चले, एक विजन आई है मुझे, एक बात आ गई मेरे जहन से पे निकल जाए, आप चप्पल कबाब अच्छे बनाती हैं?
1: ठीक होते हैं, ज्यादा ना बाजार की तरह नहीं, जैसे होते
0: अच्छे बना लेती हैं, नरम होते हैं, खस्ता खस्ता से होते हैं, नरम नरम से होते हैं, ठीक है
1: जी।
0: विजन में मैंने आप एक कबाब भी खा लिए, चाय और ये भी, और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। चाय बस वो मेरा मसला है ना, अब जब मैंने देख लिया है तो अब ये बहुत जल्द हो जाएगा, आपने हमको केक के साथ चाय सर्व करनी है और हमने साथ चप्पल कबाब भी खा लिए,
1: इंशाल्लाह
0: ठीक है। जो बीच में आपने पुलाव सोचा हुआ है वो भी डाल दीजिएगा, कोई बात नहीं,
1: तो बहुत लंबी लिस्ट है,
0: बस इतना ही लिस्ट है,
1: ठीक है इंशाल्लाह ताला।
0: ये बस जब ये हो जाएगा फिर आपने देखना है, विजन जो होती है ना, ये इंट्यूशन जो मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे आते हैं झमाके, वो झमाके कैसे पूरे होते हैं,
1: इंशाल्लाह
0: इंशाल्लाह। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि झमाका पूरा ना हो, मैं कैसे मान जाऊँ कि ये नहीं पूरा होगा, ठीक है,
1: ये भी होगा इंशाल्लाह।
0: ये न्यू जर्सी में हो रहा है कि कहाँ हो रहा है दुनिया में मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये झमाका हो गया, ठीक है।
1: अच्छा, मुझे बताइए क्या हो रहा है, मुझे भी अब एक्सप्लेन करें।
0: नहीं, कुछ हुआ नहीं, बस मैंने होता हुआ देखा, अब ये होना है, कब होना है, कैसे होना है, क्या होना है, कहाँ होना है, ये नहीं आया, बस ये आ गया कि मैं खा रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ मैं, और साथ में केक खा रहा हूँ आपका।
1: बहुत मजे का,
0: बस इतनी सी बात है, ये जब हो जाएगा आप कहेंगे एग्जैक्टली वैसा ही हुआ,
1: बिल्कुल सही,
0: ठीक। और कोई को आज आपने बहुत अच्छा सवाल और एक बहुत ही अच्छा जो जवाब जो पैकेट आया था ना, वो जाया हो गया वीडियो के बगैर, इसीलिए
1: मैं बात नहीं, ज्यादा ना हम फिर पूछ लेंगे,
0: अगली दफा पूछेंगे, कोई बात नहीं, हम भी सर पे हाथ फेर के ऐसे बैठे होंगे दोबारा से। आपको ये आवाज आ रही है ये सर पे हाथ फेरने की,
1: दोबारा से कहें क्या कहा आपने,
0: ये आपको सर पे हाथ फेरने की आवाज आ रही है?
1: नहीं,
0: ये अभी तक ये नहीं आई आपको आवाज, मुझे यहाँ तक आ रही है,
1: शख्स की,
0: हाँ जी, ये सर पे हाथ फेरा जा रहा है। ये आपका गायबाना हाथ फेरवा दिया मैंने, क्योंकि हर बंदे ने जो मोहब्बत करने वाले हैं उनका मैं हाथ रखाता हूँ, पता है क्यों, एनर्जी वाला, ये गुड एनर्जी से बाल रुकने गिरना बंद हो जाएंगे, ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी रब ने जो इंसानों के बीच में बनाया है, ये सारी चीज़ें हमें तो पता नहीं है ना, चीज़ें माइंड ओवर मैटर में चीज़ें मिरेकुलसली कैसे ठीक हो सकती हैं, आप अपने माइंड ओवर मैटर से भी चीज़ें, क्योंकि आपने ब्रेन को जब बता दिया और इतने दिलो जान से बता दिया कि वो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, तो पूरा प्लेसिबो, उसके कितने बड़े बड़े टेस्ट हो चुके हैं ना, और इसी तरह किसी इंसान के हाथ में और उसकी एनर्जी में, और उसके जब आप ये सोचते हैं, लोग आपसे नहीं, एक बंदा कह रहा होता जी मेरे लिए आप दुआ कीजिएगा, वो अक्सर दुआ,
1: अच्छा, ये दुआ में बहुत होता है, जैसे जब भी अजादला मैंने दुआ बहुत दिल से या बहुत ही
0: लाइक 100% कंफर्म होगी,
1: हाँ हाँ एकदम से वो काम हो जाता है,
0: इसलिए कि हमने देखिए हम कनेक्टेड ही नहीं है ना, उस वक्त कनेक्शन बन जाता है, कनेक्शन ही सब कुछ है, इंसानों से मिलने की उनके साथ जिंदगियां गुजारने की पूरी पूरी जिंदगी लोग गुजार देते हैं, उनका कनेक्शन नहीं बनता, कभी कभी आप किसी इंसान से मिलते हैं फौरन कनेक्शन बन जाता है, ये जो कनेक्शन रब ने रखा है ना रूहों का, ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी थी कि रूहों ने पहले आलम अरवा में एक दूसरे से मुलाकात भी रही है, उनसियत भी रही है, जैसे दुनिया में इंसानों को इंसानों से उनसियत मोहब्बत यू नो खिंचाव एक दूसरे की तरफ होता है, अट्रैक्शन होती है, इसी तरह रूहों की आलम अरवा में भी होती है, तो एक इसका ये रीज़न है, दूसरा ये आपके अंदर की अच्छाई होती है जो आप किसी दूसरे बंदे में डालते हैं, आपके अंदर की सच्चाई किसी बंदे में आप डाल देते हैं, वो बंदा बेचारा शर्मिंदा ही होता रहता है कि यार मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, लेकिन आप क्योंकि सच्चाई देखना चाहते हैं किसी के अंदर, आप क्योंकि अच्छाई किसी इंसान में देखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, तो आप उस इंसान को उस पेडेस्टल पे बिठा देते हैं और उसके अंदर ऐसी पावर्स पैदा हो जाती हैं, जैसे लोग पीरों

0: के पास जाके तो उनको उतनी अकीदत से और ये वो करते हैं, तो पीर साहब अक्सर कभी कभी कुछ कहते हैं पूरा हो जाता है, ठीक है। तो वो बेसिकली
1: बिल्कुल
0: आपके अंदर की मैनिफेस्टेशन है, जो एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है आपको, क्योंकि आप खुद अपने आप को इस तरह फील नहीं कर पा रहे होते, तो आप बीच में एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, उसके थ्रू अपनी मैनिफेस्टेशन अपने पे ले आते हैं। जैसे गाँव में कोई बुजुर्ग होते थे जिनसे आप प्यार से सर पर हाथ रखवाते थे, या जब वो आपको मिलते थे, या कुछ लोग होते हैं जो इन गले मिलते हैं तो इंसान को लगता है कि वो खुशी होती है, कभी कभी तो आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं, आपकी ऐसे भी लोग होते हैं इंसान को, जो आपकी आवाज़ सुनते हैं, आपकी बात सुनते हैं, वो रो पड़ते हैं, उनको खुद नहीं पता होता क्यों, क्यों वो, इसका लॉजिकल रीज़न ये है, उनके दिल में बहुत सारे दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ होती हैं, और उनको जेन्युइन अफेक्शन की फीलिंग किसी से नहीं आ रही होती, ट्रूथफुलनेस कनेक्शन किसी से फीलिंग नहीं आ रही होती। तो जैसे ही वो आपसे मिलते हैं, बात सुनते हैं, या आप उनको हग करते हैं, या आप उनसे हाथ मिलाते हैं, तो वो जैसे ही उनको वो फीलिंग इतनी स्ट्रांगली उनको हिट करती है कि द वन थिंग दैट दे हैव बीन लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो जैसे ही उनको मिलती है उनकी आंखों से या आंसू आ जाते हैं, या बॉडी कांपने लग जाती है, या उनके अंदर एक यू नो चेंज, एक तो उस थोड़ी देर मोमेंट के लिए उनके अंदर एक चेंज सी पैदा हो जाती है, लहर सी दौड़ जाती है।
1: इवन आपके शो पे भी, अब जैसे फॉर एग्जांपल वाधवा जी जब फोन करती है तो उनसे बहुत मदरली वाइब्स आती
0: हाँ
1: हैं,
0: जी,
1: माँ वाली।
0: जेन्युइननेस जो
1: और
0: है ना, जो आप अगर आपके अंदर ट्रूथ जिंदा है तो आपको ट्रूथ लोगों में नजर आएगा। कहते हैं ना रब वाले वो हैं जो रब में, जो रब वालों में रब दिखता है, तो बिल्कुल इसी तरह जब उनके रब की महफिल जब होती है तो लोग आपको नज़र आते हैं उस तरह के, तो वो आप वो देखना चाहते हैं तो नज़र आते हैं। आप वो सच्चाई, अच्छाई, भलाई लोगों में जब फील करते हैं, और हम में अगर ना भी हो तो हम दूसरे को के अंदर वो डाल के उसके थ्रू एनर्जी का शॉट ले रहे होते हैं एक्चुअली, क्योंकि उसके बगैर रूह सर्वाइव नहीं कर सकती। रूह बड़ा कमाल काम है, अगर आप इसको ना रब इसको कनेक्शन आप कनेक्शन में नहीं डाल के रखेंगे तो ये जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मर जाएगी, मुरझा जाएगी आपके अंदर, क्योंकि हमारे एक्शन से ये वीक होती जाती है, झूठ से, बेईमानी से, मैनिपुलेट करने से, चालाकियाँ गेमें करने से, जो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते वो मांगते रहने से, वो हासिल करने की कोशिश करने से, कानून कुदरत के ख़िलाफ़ अपनी ख्वाहिशात और अपने एक्शन रख कर रिज़ल्ट लेने से वो कमज़ोर होती जाती है, कमज़ोर होती जाती है। स्पेशली जो लोगों की दुश्मनियाँ करते हैं, गालम गलोच करने से लोगों के साथ, उनको फिज़िकल, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत का नुकसान करना, उनके माल का नुकसान करना, उनके रिश्तों का नुकसान करना, ये चीज़ें करने से रूह जो है वो बेइंतहा तकलीफ़ में आती है इंसान की, वो इंसान को पता नहीं चलता, क्योंकि वो जिस्म के ऊपर इतना पागल फोकस उसने किया हुआ है कि रूहानी तौर पे वो बेचारा मरा हुआ होता है, इसीलिए फिर उसको इनसिक्योरिटी होती है, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, फिर आप पोजेसिव होते हैं, ऐसे लोग पोजेसिव होते हैं, ऐसे लोग शेयर नहीं कर सकते, शेयरिंग नहीं कर सकते, अपनी चीज़, अपनी दौलत नहीं शेयर कर सकते, अपने जो प्यारे लोग होते हैं वो नहीं शेयर कर सकते, इनसिक्योर रहते हैं हर वक्त, कुछ भी होता है तो उनको लगता है मेरे पे बात आ जाएगी, मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया, या मुझे ऐसा फील करा दिया गया, या मुझे और चाहिए, इससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ मैं, इस किस्म की वो बंदा बातें करता है जिसका रूह जो है वो अंदर से कमज़ोर हो चुका होता है, फिर ये सारे यू हैव टू रिजॉर्ट टू ऑल दीज मीन्स। इस तरह सोचा कभी आप डॉक्टर साहब?
1: नहीं,
0: डॉक्टर साहब MBBS में क्या पढ़ाते हैं यार? डॉक्टर, मैं तो डॉक्टर किसी को बना के फंस गया हूँ। मैं तो कहता हूँ या तो इंसान का पुत्र बन पहले, बाकी चीजें बाद में करेंगे हम, जैसे डॉक्टरी जाकर बाद में।
1: डॉक्टर जितने बुरे हाल में, मैं कहती हूँ बाकी
0: कह तो रहा हूँ, मैंने बच्चे को
1: हाँ
0: क्यों कहा था अगर मैं तुझे डॉक्टर, इसलिए मैं अगर तुम्हें डॉक्टर बनाना होता तो मैं किसी एक ऐसे डॉक्टर को नहीं जानता मैं जिसकी तरह अपना बच्चा बनाना चाहूँ, ठीक है। तो मैंने अगर डॉक्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरा मकसद ये था, पहले आप इंसान बने, पहले आप चीज़ों को समझें, जिस्म को समझो, जिस्म क्या है उसके हिसाब, जहन को समझो, जहन क्या है उसके हिसाब से अपने जहन पे, अपने जिस्म पे काम करो, उसके हिसाब से अपने इर्द गिर्द के जो हमारे फैमिली है, जो रिश्तेदार हैं, जो गरीब मस्कीन लोग हैं, मेडिसिन के इफ़ेक्ट्स को समझो, उसको असल में ये चीज़ें काम कैसे करती हैं इसको समझो, और ये समझो कि मेडिसिन देनी भी है कि नहीं, सप्लीमेंट से चीज़ ठीक हो सकती है कि नहीं, कंजर्वेटिव अप्रोच रखने से और खाम खा ड्रग पैडलर में और डॉक्टर में फ़र्क होता है ये समझो। तो ये सारे काम के लिए, और इसके बाद आप एक छोटा सा दुकान जिसको कहते हैं या एक क्लिनिक खोल सकते हैं जिसमें लोग आपके पास आएँ स्लोली एंड ग्रेजुअली, आपका भी खर्चा चले, आपके भी काम हो, एक सेल्फ प्रोपेल्ड एक सोशल बिजनेस बन सके जिससे आप अपना काम और घर भी चला सकते हो, उसमें आपको बाहर से किसी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डिग्री आपके पास है, एक्सपीरियंस आपने ले लिया, बाकी आप छोटी मोटी चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, खुद सही हो जाएगा। इसके बीच में अगर आपको छोटा सा एक हॉस्पिटल बनाना है ज़रूर बनाएं, जिसमें बेसिक नीड्स की तमाम चीज़ें होनी, फार्मेसी होनी चाहिए, जिसमें आपके पास एक्सरे की मशीन होनी चाहिए, जिसमें आपके पास फिजिकल थेरेपी की कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें आपके पास एक दो डिफरेंट तीन किस्म के डॉक्टर होने चाहिए जो कोई भी आए ट्रामा को डील कर सकते हैं, इस किस्म की कोई भी चीज़ को। सो ये सारा कुछ सिंपल 8-10 साल की मेहनत से ही सब बनाया जा सकता है। तो पैसे ही पैसे हैं, अगर आपको पैसे चाहिए तो वैसे ही मिलते रहेंगे, लेकिन मकसद मिलेगा साथ, पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट होगा।
1: ज्यादा ये जो एक्चुअल डॉक्टर्स हैं वो ये करेंगे, आजकल तो मेजॉरिटी डॉक्टर्स तो बिजनेसमैन बने हुए हैं, वो तो पैसे
0: देखें, वो भी देखें अगर वो बिजनेस नहीं करेंगे ना, जिस तरह का गवर्नमेंट खुद चाहती है उनसे, अमेरिका में देखें कितना चेंज आया है, ये EHR, EMR, ये फलां फलां चीज़ें स्क्राइब रख के फलां करके खर्चे बढ़े हैं, जो पहले डॉक्टर जितना कमाते थे उससे 40% लेस पे चले गए कई लोग, तो अपड़ धपड़ मच गई क्योंकि खर्चे उस हिसाब से कर रहे थे, सेविंग तो कोई थी नहीं। तो उस हिसाब से थोड़ी बहुत बिजनेस सेंस उनको भी समझने की ज़रूरत है। तो दरमियानी सी एक चीज़ रख के अगर आप सोशल बिज़नेस, इसीलिए मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि जिसमें आप सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान नहीं है आपका, आपका भलाई पे भी ध्यान है, मकसद पे भी ध्यान है, इल्म पर भी ध्यान है, खुद पे अप्लाई करने पर भी ध्यान है। मैं उनको हमेशा, वो जो पढ़ाई पागल हो रहे होते हैं पढ़ के उसको मैं कहूँ जाओ एक्सरसाइज करो, जिम करो, अच्छा सोचो, बेसिक चीज़ें जो तुम्हें बॉदर करती हैं फैमिली के बारे में या किसी और के बारे में, तुम्हारा भी कोई कंट्रोल नहीं है, तुम यू विल जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़ राइट नाउ, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो सारी चीज़ें डील हो जाएंगी आराम से। तो कोई चीज़ें मेरी हैं तेरी है ही नहीं, खाम अपने दिमाग पर मत प्रेशर डालो। हाँ मतलब यंग बच्चों को लगता है ना आगे मेरे पे ये प्रेशर है, आगे मैं ये देखूंगा, कुछ नहीं आप कर पाएंगे फिलहाल अगर आप नहीं कर पाए जो आपका टास्क एट हैंड है। तो ज़िंदगी में ये जितने लोग मेरे पास आते हैं सारे इतने ओवरवेल्म्ड होते हैं कि प्रेजेंट को बर्बाद कर रहे होते हैं, जिसका प्रेजेंट बर्बाद है उसका फ्यूचर कभी अच्छा नहीं हो सकता। ये वही वाली बात है, प्रेजेंट पे आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपके वेट बढ़ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपकी डायबिटीज़ आप हो जाएगी, उसके बाद आप कहते हैं जी मैं फ्यूचर में हेल्दी हो जाऊंगा, बेवकूफ़ हैं आप, ऐसे कैसे हो सकता है। हकीकत को जो बंदा हकीकत के आगे आदमी आंखें बंद करेगा वो मारा जाएगा, वो उसका कोई है कि मेरे पे रब ने ऐसा क्यों किया, रब के इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं। आप ट्रक के आगे खड़े हो जाओ कल, रब क्या करे, आप खुद खड़े, उसने आपको अकल दी है, लॉजिक दिया है, रीजनिंग दी है, आप क्यों खड़े हुए हैं। इसी तरह लोग रिश्तों के ट्रक के आगे खड़े जाते हैं, गलत बंदे के साथ उसको खुश करने के लिए या उसके नाम अपने साथ लगाने के लिए या उसकी पर्सनैलिटी के लिए या उसके यू नो पैसों के लिए लोग जो हैं वो इस काम में पड़ते हैं, उसके बाद मार खा रहे होते हैं, जलील हो रहे होते हैं। तो खुद हमारा किया धरा है, फिर कहें जी आप सिंपथी नहीं है हमारे साथ, मैं क्या सिंपथी करूँ, क्या सिंपथी करूँ, मुझे तो इस बात की सिंपथी है कि आप इतना कहने के बावजूद आपने अभी तक अपना सिम कार्ड एक्टिवेट ही नहीं किया ब्रेन का। मैं तो नहीं इम्प्रेस होता बिजनेसेस से, पैसों से, डिग्रियों से। आप इंसान होने के नाते खाना आपके साथ मैं खा लूँ, आप इस काबिल भी कई लोग नहीं होते। मैं आपसे बात कर लूँ और उस बात का कोई मतलब बन जाए और उस फ्यूचर में आगे जाके आपके साथ मैं कुछ चीज़ कर सकूँ, तो आप कई लोग तो इस काबिल भी नहीं होते। वो वैसे ही बात करते हैं, वैसे ही कुछ चीज़ें करके घंटे दो के बाद गायब हो जाते हैं, उसके बाद मेरा 2 घंटे ज़ाया कर दिया आपने, ना वो कभी मिलेंगे, ना बात करेंगे, ना किसी चीज़ की तरफ जाएंगे। और कई मेरे जानने वाले ऐसे हैं जिससे भी मिल के आते हैं, कहते हैं कमाल बंदा मिला, वो ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा, उसने ये चीज़ कर दी है, अब वो ऐसे हो जाएगा, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है। कुछ भी नहीं होता, ठुस, कितने घंटे उनके ज़ाया हो गए। तो हर एक की तरफ तब आदमी देखता है जब आदमी को अपने काम पर अपना रास्ता क्लियर नहीं होता है। और उसके बाद
1: अजादला, जो इस तरह के जो लोग आपके साथ डील करते हैं, जो आपका टाइम भी, यानी इसका दुख होता है आपको?
0: नहीं, अब क्यों दुख होगा, जब अगले दिन फैसला करके दिया कि अगली दफा जब तक ये कुछ करेंगे नहीं, कुछ काम नहीं होगा, कुछ करके नहीं दिखाएंगे, मेरे पास वक्त ही नहीं उनके लिए। फैसला जो हो गया, दुख किस बात का होगा? लर्निंग के बाद दुख नहीं होता आदमी को, बार बार वही लर्निंग करेंगे तो दुख होगा। अपेरेंटली हर वक्त मुझे किसी, कभी कभी मैं डाउन होता हूँ, लोग समझते हैं पता नहीं कुछ बड़ी गड़बड़, बड़ी गड़बड़ क्या होनी है मेरे साथ, मेरा क्रिएटिव काम नहीं हो, मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ वो मैं लिख नहीं पाया, तो इसलिए शायद मैं थोड़ा सा डाउन हो सकता हूँ। जो चीज़ें थी 2-4 मैंने सोची हुई थी, पूरी प्लानिंग करके मैंने दी हुई थी, उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं किया गया, 2-3 जो बिजनेसेस हैं उसकी वजह से अब रिजल्ट वो नहीं आ रहा जो आना चाहिए, अब मुझे फिर मेहनत करनी पड़ेगी, इससे मैं शायद थोड़ा सा डाउन हो सकता हूँ। हेल्थ कभी ऊपर नीचे हो जाती है, एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, कुछ और उससे मैं थोड़ा डाउन हो सकता हूँ, वरना और क्या है? क्या मुझे लब भी लोग कहते हैं आप तक परेशान हैं, चुप हैं, फलां हैं आपको, तो मैं कहता हूँ दुख तकलीफें परेशानियाँ तो सारी आप लोगों की किस्मत में है, मुझे तो वो है ही नहीं, वो तो आपने खुद अपनी किस्मत में लिखवाई हुई है, मुझे वो वाले इश्यूज़ नहीं है। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाऊँगा, कल ठीक हो जाऊँगा, काम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, एक्सरसाइज करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, खाना खाऊँगा तो ठीक हो जाऊँगा, मेरा तो रोना धोना है ही नहीं, रोने धोने सुनने के लिए तो मैं पैदा हूँ। पहले 30 साल रो धो लिया ना, बहुत रो लिया मैंने, बहुत थक गया मैं, बहुत फजूल लोगों को टाइम मैंने ज़ाया कर दिया, बहुत मर्द औरतें बच्चे बड़े छोटे सब देख लिए मैंने, बड़ा टाइम मैंने दुनिया पे ज़ाया किया, लेकिन उस ज़ाया नहीं हुआ, उस ज़ाया होने से मेरी ज़िंदगी बन गई, क्योंकि मुझे ये सब कुछ देखना था। बुरी से बुरी जगह पर मैंने मिला, जिन लोगों को, जिन प्रोफेशंस को लोग अपेरेंटली इतना बुरा समझते हैं, जिन लोगों को इतना बुरा समझते हैं, मैं उन लोगों से मिला, मैंने उनके साथ वक्त गुजारा, मैंने लोगों के इंटरव्यूज़ लिए, उनसे बातें की, क्यों ये ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा होता है, वो कैसे ऐसे जीते हैं, ये सब मैंने देखा जाना भाला। हर मज़हब के बंदे को मैं मिला, हर किस्म के लोगों से मैंने बातचीत की, हर किस्म के यू नो मैंने बातें सुनी। मेरे लिए बहुत कम ऐसी कोई चीज़ होता है कि मुझे सरप्राइज़ हो जाए, क्योंकि इतना कुछ देख लिया सुन लिया मैंने, और अभी भी बहुत कुछ है जो मैं साथ साथ अभी जो चीज़ें कर रहा हूँ अभी और भी देखने सुनने को मिलेगा, लेकिन कुछ नया जब तक नहीं मिलेगा, पुराने लोग फिर कहते हैं जी आप हमारे इर्द गिर्द बोर हो जाते हैं, आप फलां होते हैं फलां, तो वो आप हरकतें ऐसी कर रहे हो, आप नई को काम करो, नई एक्साइटिंग चीज़ करो, को फन करो, नहीं बोर होंगे आपसे, अगर कोई बोर होता है तो कसूर आपका है, और अगर उसके बावजूद कोई बोर होता है तो फिर जाके अपना इलाज कराए, ज़हनी तौर पर कोई यू नो उसका कोई केमिकल लोचा चल रहा है। ठीक है, कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने दिए, और घंटा गुजरने का पता ही नहीं चला, और इतने काम की बातें लोगों तक पहुंच गई,
1: तो ज़्यादा ये सब कुछ आपकी वजह से।
0: हाँ जी, ये मेरे पे डाल दिया करें आप। लोग सारी जिंदगी मेरे पे पुठी चीजें डालती हैं, आप सीधी चीजें मेरे पे डालती हैं।
1: चले,
0: अगर इतना जब आप अच्छा काम करते हैं ना, फिर हम डिजर्व करते हैं कि हम एक फड़कता हुआ ट्रैक सुने, और वो ट्रैक इतने दिलो जान से सुने कि हम हिल हुल जाएं, आवाज़ अंदाज शायरी और एक एक चीज़ को गौर से सुनने वाली को पीस पेश करते हैं आज आपके लिए। ठीक है,
1: जबरदस्त,
0: चलें आ जाएं, और जी जो गौर से सुनिएगा जी, आम ट्रैक जिसको आप जैसे सुनते हैं वो ट्रैक वैसे नहीं होता अक्सर, वो आयशा जी या अक्सर लोग, मैं जब गाने को एक्सप्लेन करता हूँ उसके बारे में बात करता हूँ तो कहते हैं बहुत मज़ा आया, ये शो बहुत अच्छा था। ठीक है जी, सुने फिर ऐसी चीज़ जो रात सोने से पहले सुन सकते हैं आप, दिन को सुन सकते हैं, जब आपका दिल बड़े अरसे के बाद कोई ऐसी चीज़ मुझे जब टकराती है उसके, मैं बार बार उसको सुनता रहता हूँ, और जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ अपने वक्त के साथ, तो फिर मैं ये सुनता हूँ। गौर से सुनिएगा एक एक शेर, एक एक लफ्ज़ और अंदाज़, और अपने काम का जब कोई मास्टर होता है ना, मतलब उससे बेहतर चीज़ नहीं की जा सकती, तो फिर पिनिकल पे जाके एक्सेलेंस के ऊपर ये ऐसी चीज़ें क्रिएट होती हैं, और पहली दफ़ा आपको ये पता चलेगा कि रीमिक्स को भी अगर अकल इस्तेमाल करके यूज़ किया जाए गाने में, तो झनकार गीत माला खाम खा छण छण करने से, ज़िंदगी में छणकड़े बजाने से रीमिक्स नहीं हो जाती चीज़। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी, दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ, यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे, स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 2 o'clock.
1: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
2: This is the national and international news today, Thursday, 16th of July, for Inspire FM, read by Shahin Mirza. First, the headlines. Iran targets military bases as US launches wave of strikes. Starmer pledges cast iron support for Ukraine on final visit as Prime Minister. Agony for England fans after World Cup exit as FA backs Tuchel to continue as boss. British Steel taken into public ownership to protect vital UK supply. TikTok faces Ofcom investigation over child age checks. New monkey species with orange lips found hiding in DR Congo forest. Firefighters battle major wildfire across Cairngorm. And now the details. Tehran has launched fresh attacks on US military bases in neighboring Gulf states, while Washington continued to strike sites across Iran overnight. Tehran said it had struck targets in the region, including in Jordan, Kuwait, and Bahrain, as a sixth day of renewed hostilities strained their preliminary deal to end the war. Meanwhile, the US military said it inflicted a six-hour wave of strikes in multiple locations to degrade Iran's ability to threaten innocent mariners in the Strait of Hormuz. The latest exchanges came after US President Donald Trump warned Iran it had better behave or face further military action should Iran not return to negotiations. Keir Starmer has said the UK's cast iron support for Ukraine will continue as he makes a final trip to the country as Prime Minister. He will meet Ukrainian President Volodymyr Zelensky in the capital, Kiev, later on Thursday, ahead of Andy Burnham's installation as Labour leader and Prime Minister. In comments ahead of his trip, Keir Starmer said the fortitude of the Ukrainian people since Russia's full-scale invasion in February 22 had preserved the security of Europe. FIFA World Cup 2026. Argentina come from behind to beat England 2-1 in the semi-finals. Argentina will play Spain in Sunday's final, while England take on France in the third place final on Saturday. Thomas Tuchel says he has no regrets, but football writer Henry Winter is among those criticising the England manager for his substitutions and tactics. Former England midfielder Peter Wright said Tuchel should remain as manager. British Steel has been taken into public ownership in what the government said was a bid to protect UK steelmaking. The future of the steelworks, which employs roughly 2,700 people in Scunthorpe and supports many other industries in northern Lincolnshire, has been dogged by uncertainty over recent years. Today's decision secures the future of steelmaking in the UK, protects skilled jobs and safeguards a vital national capability, Keir Starmer said. The UK government took control of British Steel operations in Scunthorpe last year, though it has since remained under the ownership of the Chinese firm Jingye Group. An investigation has been launched into whether TikTok is doing enough to keep children off its platforms. The probe by media regulator Ofcom comes a month after the UK government announced that under-16s would be banned entirely from a range of platforms. Ofcom will examine how the video sharing app assesses if a user is a child and whether it has adequate systems to prevent children from viewing harmful content. We're confident that we meet our Online Safety Act obligations and will work with Ofcom to demonstrate it, a TikTok spokesperson said. A monkey that has striking pinkish-orange lips and a black face and lives in the forests of the Democratic Republic of Congo has been confirmed as a new species to science. The black-furred primate was spotted and photographed hidden away in the high tree canopy of dense tropical forests in Lomami National Park in the central east of the country. Conservationists working there first reported seeing this unusual-looking animal back in 2008, but they captured just one blurry photograph. Firefighters have been battling overnight to try and contain a large-scale wildfire in the Cairngorms National Park. The fire broke out at about 11:50 on Wednesday. There is currently a very high risk of wildfire in place for the Central Highlands, Southern and Eastern Scotland. The Scottish Fire and Rescue Services says it is very much an ongoing incident, with fire crews expected to be there for the remainder of the day. Elsewhere, seven Britons were among those killed in the recent wildfires in southern Spain. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu news with Mukarram Abbas.
3: इंस्पायर एफएम की उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मुकर्रम अब्बास। सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। ईरान की बहरिया ने कहा है कि खित्ते में तेल और गैस की बरामदात का रास्ता या तो सबके लिए दस्तयाब होगा या किसी के लिए नहीं। अमरीकी सेनेटर्स ने रशिया पर पाबंदियों के बिल का नया मसवदा असेंबली में पेश कर दिया। चेयरमैन पीटीए ने कहा है कि पाकिस्तान में 440 टावर्स पर 5G सर्विस लॉन्च कर दी गई है। आज़ाद कश्मीर में कालादम जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी ने लॉन्ग मार्च 21 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में पुरअम इंतखाबात के इनाकात को यकीनी बनाएंगे और गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने वाले 12 पाकिस्तानियों ने अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा दी। और अब इन खबरों की तफसील। ईरान की बहरिया ने कहा है कि खित्ते में तेल और गैस की बरामदात का रास्ता या तो सबके लिए दस्तयाब होगा या किसी के लिए नहीं। ईरानी सदर ने अपने बयान में कहा है कि ईरान के एक एक इंच का दिफा करेंगे और अमरीकी धमकियों से डरने और अपने मकासद से पीछे हटने वाले नहीं हैं। दूसरी जनब कवैत में सेटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर, रेडार्स और मिज़ाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म्स को ईरान की जानब से निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर में कालादम जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च 21 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मुतालिबात मंजूर न होने की सूरत में 22 जुलाई को एक मरतबा फिर मुजफ्फराबाद की जानब लॉन्ग मार्च किया जाएगा। कालादम जमात और हुकूमती मेंबरान के दरमियान मुज़ाकरात के बाद हुकूमत ने मुतालिबात पर गौर करने और मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। दूसरी जनब कालादम जमात की कोर कमेटी के मेंबरान ने कहा है कि एहतजाजी धरना ख़त्म नहीं कर रहे, 21 जुलाई तक हुकूमती पेशरफ्त का इंतज़ार करेंगे। मुतालिबात मंजूर न होने की सूरत में एहतजाजी लॉन्ग मार्च किया जाएगा। गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने वाले 12 पाकिस्तानी नौजवानों ने अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा दी। लापता 12 नौजवानों में से 7 का ताल्लुक लाहौर से है। बैरून मुल्क जाने के लिए लापता नौजवानों ने लाखों रुपए एजेंटों के दिए, ताहम अब इन नौजवानों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और ये एजेंट्स 10 लाख रुपये फ़ी कस वसूल करने के बाद अब मज़ीद 15 लाख रुपये तावान वसूल करने का मुतालबा कर रहे हैं। लवाहिकी ने बाजियाबी के लिए FIA और दिगर इदारों को दरख्वास्त देते हुए मदद की अपील की है। अमरीकी सेनेटर्स ने रशिया पर पाबंदियों के बिल का नया मसवदा पेश कर दिया है, जिसमें रूसी तवानाई खरीदने वाले मुल्कों पर 500% टैरिफ कम करके ज़्यादा से ज़्यादा 100% कर दिया है। इस तब्दीली से भारत और चीन समेत रशियन तेल के बड़े खरीदार मुल्कों को अहम रिलीफ मिलने का इम्कान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में पुरअमन इंतखाबात का इनाकात यकीनी बनाएंगे। जुमला इंतजामी इदारे इंतखाबात के बरवक्त इनाकात को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करें। दूसरी जनब आज़ाद कश्मीर भर में इंतखाबी सरगर्मियां भी अरूज पर हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन कम्पेन के सिलसिला में दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर ने अगरचे इलेक्शन का बायकॉट कर रखा है, ताहम चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि अगर इलेक्शन मौखर हुए और हालात पुरअमन हुए तो हम अपने फैसले पर नज़रसानी कर सकते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने कहा है कि इंटरनेट स्पीड को एवरेज से मीडियम पर ले गए हैं। पाकिस्तान में 440 टावर्स पर 5G लॉन्च कर दी गई है। अगरचे पाकिस्तान में इस वक्त लोड शेडिंग की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है, ताहम इंटरनेट की बेहतरीन सर्विस के लिए PTA मौसर इकदामात कर रहा है। अमरीकी सेनेटर्स ने रशिया पर पाबंदियों के बिल का नया मसवदा पेश कर दिया है, जिसमें रूसी तवानाई खरीदने वाले मुल्कों पर 500% टैरिफ कम करके ज़्यादा से ज़्यादा 100% कर दिया है। इस तब्दीली से भारत और चीन समेत रशियन तेल के बड़े खरीदार मुल्कों को अहम रिलीफ मिलने का इम्कान है। सामीन, ये थी इस वक्त की अपडेट्स। मज़ीद अपडेट्स के लिए सुनते रहिए इंस्पायर FM।
1: Always up to date with everything that's happening locally, nationally, and internationally. This is Inspire FM.
4: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We are now going to play for you the Daily Iman Booster, a series of short reminders to boost the heart and soul.

0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 8 o'clock.

0: دیکھیں میں جب امریکہ میں رہا ہوں نا, میں نیویارک میں نے کافی عرصہ گزارا. نیویارک جو ہے وہ امریکہ کا ایک طرح سے امیگریشن کیپیٹل ہے, دنیا جہاں سے لوگ نیویارک آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کیونکہ میں نے سارا امریکہ دیکھا ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں نیویارک باقی امریکہ ایک طرف, نیویارک ایک طرف. جو نیویارک میں رہا ہے نا اس نے باقی امریکہ نہیں دیکھا, اور جس نے باقی امریکہ دیکھا ہے اس نے نیویارک نہیں دیکھا. اپنی الگ دنیا ہے وہ. اوکے, خیر وہاں دنیا جہاں کے لوگ آتے ہیں, اور وہاں عجیب معاملہ ہے. ایک نیبرہڈ میں, ایک محلے میں سارے چائنیز موو ہو گئے, ساری دکانوں کے سائن چائنیز میں ہیں, سب چائنیز میں بات کر رہے ہیں. ایک نیبرہڈ میں سارے پورٹو ریکن موو ہو گئے, سب اسپینش میں بات کر رہے ہیں. میں وہاں کام بھی کرتا تھا ایک شو اسٹور میں, وہاں سارے اسپینش میں بات کرتے ہیں. انگلش میں بات کروں غصہ کریں گے. اوکے, کہ کیا پرابلم آتی ہے, نو ابلا اسپینیول اسٹاسنیز, امریکہ میں رہ رہے ہو اسپینش نہیں آتی, شرم کرو, وہ اس طرح بات کریں گے وہاں پہ. آپ بروکلن میں چلے جاؤ, اٹلانٹک ایونیو پہ سارا یمنی نیبرہڈ ہے, سارے عربی میں ساری دکانیں ہیں, عربی میں سارے بات کر رہے ہیں, خطبہ عربی میں ہوتا ہے وہاں پر, اور دکانوں میں سارے عربی میں. یعنی آپ یمن میں داخل ہو گئے ہو ایک طرح سے. اس سے دو بلاک آگے جاؤ, وہ کیا نام ہے, اٹلانٹک ایونیو پہ بہت بڑا جوئش نیبرہڈ ہے, وہاں سارے سائنز ہیبرو کے اندر ہیں وہاں. اور ایک اور نیبرہڈ میں گریک نیبرہڈ ہے, ایک اور نیبرہڈ میں جو ہے اٹالین نیبرہڈ. یعنی ہر ایک نے اپنے اپنے محلے بنائے ہوئے, لیکن ساتھ ایک شہر بھی ہے. تو جب وہ آپس میں بات کرتے ہیں نا, تو ہوتا کیا ہے, کیونکہ وہ سارے فورنرز ہیں, تو اصل میں جو وکٹم ہوتا ہے نا ان کا, جس زبان کی دھجیاں اڑتی ہیں, وہ ہے انگلش. تو دنیا کی سب سے خراب انگلش نیویارک میں بولی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں. اسی طرح سب سے عجیب زبان آپ کو دنیا میں ملے گی مکے میں آپ کو ملے گا, کوئی یمنی بیٹھا جائے نماز بیچ رہا ہے, کہہ رہا ہے پانچ ریال. میں سمجھا مجھے عربی استعمال کرنے کو ملے گی وہاں پہ. میں گیا کسی سے, میں نے پوچھا این المطعم الباکستانی, پاکستانی ریسٹورینٹ کہاں پر ہے, کہتا ہے انطلق سیدھا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب مختلف کلچرز ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا, تو ایک زبان اور دوسری زبان آپس میں گڑبڑ ہونی شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اسلام جب پھیلا, جب فتوحات ہوئی, تو عرب جو صحرا میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے ہزاروں سال, کس سے بات کرتے تھے؟ ایک دوسرے سے. ان کی زبان خالص رہی کیونکہ ان میں کسی کو ان میں دلچسپی نہیں تھی. اگر رومی سلطنت روم ان پر حملہ کرے بھی تو کیوں کرے؟ کیا ملے گا یار ریت کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. جو ایرانی سلطنت ہے, وہ کیا فائدہ دے گی عرب پہ حکومت کر کے؟ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, یہ بس بھیڑ بکریاں چلائیں گے, اونٹ اپنے چلائیں گے, تھوڑا بہت چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں, خیر ہے. تو ان کو دنیا نے بھلا دیا تھا, اور جب دنیا نے ان کو بھلا دیا اور یہ تھوڑی بہت تجارت بھی کرتے تھے, اصل ان کی زبان باقی کلچر سے, باقی زبانوں سے 90% میں کہہ دوں آئسولیٹڈ رہی. باہر کی زبانوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا ہزاروں سال, اور اس لیے ان کی زبان بہتر ہوتی گئی. ایک اور بات آپ کو بتا دوں, جن سوسائٹیز میں بزنس اور تجارت اور عمارت زیادہ ہوتی ہے نا, ان سوسائٹیز میں فلسفہ اور شاعری اور ادب کم ہوتا ہے. کم اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں سارے لڑکے لڑکیاں کون سے اسکول میں جا رہے ہیں؟ بزنس اسکول میں جا رہے ہیں, میڈیکل اسکول میں جا رہے ہیں, انجینئرنگ میں جا رہے ہیں, ٹریڈ میں جا رہے ہیں, ہے نا. اور کوئی بھی کہے میں نے انگلش لٹریچر میں پی ایچ ڈی کرنی ہے, تو اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں. کوئی ہسٹری پڑھنا چاہے, کوئی فلاسفی پڑھنا چاہے, کوئی پوئٹری پڑھنا چاہے, کوئی اردو ادب پڑھنا چاہے, تو کہیں گے کیا کر رہے ہو اپنی زندگی کے ساتھ. عرب کیا تھے؟ عرب اکیلے صحرا میں, بڑا ٹائم ہے جی شاعری کا, بہت ٹائم ہے لائنیں مارنے کا, بہت ٹائم ہے, بڑا. اور ان میں سے جو زیادہ شاعری کرے گا اس کی واہ واہ جی, او ہو ہو ہو, یہ کلچر تھا ان کا. اب ان کے پاس نہ اس طرح, آپ یہاں پر کون سا شہر ہے جہاں وہ ورلڈ کپ کی فٹ بالز بنی تھی؟ سیالکوٹ کو فخر ہے اپنی فٹ بال پہ, نہیں. کسی اور کو किसी और शहर को फुटबॉल, हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बैट बनता है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लेदर बनता है, हमारे यहाँ ये बनता है, हमारे यहाँ वो बनता है, फ़ख्र होता है ना। अरे अब क्या कहेंगे, हमारे यहाँ का जो जला हुआ पत्थर है ना, ओहो किस चीज़ पे फ़ख्र करें वो। क्योंकि इंसान की शख्सियत में, सोसाइटी की शनाख्त में होता है कि उसको किसी ना किसी चीज़ पर फ़ख्र करने की ज़रूरत होती है। तो अरब को हज़ारों साल से किस चीज़ पर फ़ख्र करने का जवाब था, क्या थी एक चीज़? ना उनके पास बिल्डिंग है, ना उनके पास हाईवे है, ना उनके पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ना कोई सल्तनत है, ना जैसे रोम के पास है, जैसे यमनियों के पास है, जैसे वहाँ पर ईरानियों के पास है। वो कहते हैं इनके पास महल तो होंगे, ज़बान हमें आती है, जैसी लाइनें हम मारते हैं ना कोई नहीं मार सकता। और जब एक दफ़ा आपको एक चीज़ पे फ़ख्र हो जाए ना, तो आप उसमें बहुत ही ज़्यादा अपसेस हो जाते हो। तो इन लोगों को कल्चरली ना अपनी ज़बान के साथ बहुत ज़्यादा क्या हो गई, अपसेशन, ख़ास अपसेशन। और फिर होता क्या था कि तनकीद का बड़ा कल्चर था इनमें। कोई शेर कर दे, कोई शेर सुना दे, लनल जफनातुल गुर यलमअना बिद्दुहा, यू नो व असयाफुना यजीना, मुझे बाकी याद नहीं आ रही क्या नाइन थी, बिलमाइल ना, कल निकाल के दिखाऊंगा आपको वो शेर। खैर पहली याद आ गई, हमारे पास वो एक एक कबीला फ़ख्र करता था कि वो कितना कितना वो क्या नाम है सदका करते हैं। तो अजफ़नातुल गुर यानी हमारे पास जो डोंगे होते हैं ना, बोल्स को क्या कहते हैं तुम यार, प्याले, हमारे प्याले जो है ना वो भी चमकते हुए होते हैं, यलमाना बिद्दुहा, दिन के वक्त हमारे जफ़नात, हमारे प्याले चमकते हैं, यानी जो प्याले जिससे हम सदका करते हैं, यानी हम सदका भी करते हैं तो बड़े चमकीले प्यालों में करते हैं, यलमाना बिद्दुहा। तनकीद हो गई, जी ये आपने जफ़नात कहा था, ये जम्मू किला है, यानी आपके पास बहुत थोड़े से प्याले हैं, जिफान कहा होता तो ज़्यादा प्याले होते, पैसे तो आपके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। और फिर आपने बिद्दुहा कहा कि दिन में चमकते हैं, दिन में तो हर चीज़ चमकती है, पत्थर भी चमक रहा होता है, कहना चाहिए था रात में चमकते हैं। यानी कोई शायरी कर भी दे तो उसकी धजियाँ उड़ानी शुरू करते थे। और इस माहौल में फिर उनका अपना मुहावरा था, और मुहावरे की बात बहुत ज़रूरी है, हर सोसाइटी का अपना क्या होता है, मुहावरा। आप डिक्शनरी से ज़बान नहीं सीख सकते, डिक्शनरी से आपको कुछ अल्फाज तो आ जाएंगे, लेकिन असल जो ज़बान होती है ना वो किस में होती है, मुहावरे में। आप अगर अंग्रेज़ी में तर्जमा करो, मैं फलानी जगह गया और उन लोगों ने मुझसे ऐसे बात की, मेरी तो नाक कट गई, अब उसका आप अंग्रेज़ी में तर्जमा कर दो, मेरी नाक कट गई, यू नो आई वेंट टू, यहाँ पे कहूँ मेरी अपने यू नो वाइफ को मैसेज भेजूँ, आई वेंट टू दिस पार्टी एंड माई नोज गॉट कट ऑफ। तर्जुमे में मुहावरा ज़ाया हो जाता है, क्योंकि मुहावरे का ताल्लुक कल्चर के साथ होता है, समझ रहे हैं बात? जैसे जैसे कल्चर बदलता है, वैसे वैसे क्या बदलता है, मुहावरा बदलता है। आजकल जो मुहावरा उर्दू में इस्तेमाल हो रहा है, मैं पूरे एतमाद से कहता हूँ 20 साल पहले इस्तेमाल नहीं हो रहा था, और 20 साल पहले जो मुहावरा इस्तेमाल हो रहा था वो 40 साल पहले इस्तेमाल नहीं हो रहा था। जैसे जैसे सोसाइटी बदल रही है, वैसे वैसे क्या बदल रहा है, मुहावरा बदल रहा है। सही बात है कि नहीं? अंग्रेजी का मुहावरा बदलता है कि नहीं? बड़ी जल्दी बदलता है। 80s में कहते थे दैट्स सो कूल, 90s में कहते थे दैट्स सो हॉट, अब कहते हैं दैट्स फायर, दैट्स लिट, बदलता चला जा रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है, सोसाइटी बदलती है, मुहावरा भी क्या होता है, बदलता है। अच्छा मैं बात समझा दूं, अरब की फतूहात हुई, अब जब फतूहात हुई तो और कल्चर्स आए कि नहीं? अब ऑल कल्चर्स आते हैं, दूसरे कल्चर्स आते हैं, तो उनकी ज़बान और अरबी ज़बान की आपस में क्लैश होती है कि नहीं? तो होनी है। अब कल्चर बदल रहा है तो और क्या बदलेगा साथ साथ, मुहावरा बदलेगा। अब कुरान का अपना मुहावरा है कि नहीं? लेकिन कुरान का मुहावरा इस्लाम के फैलने से पहले वाला है या इस्लाम के फैलने के बाद वाला है? पहले वाला है। अब वो पहले वाला मुहावरा तो मर रहा है, वो तो ख़त्म हो रहा है, और बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है। अब वो जैसे ही इस्लाम, जैसे उसको फतह मिली, इस अरब का मुहावरा मरने लगा, और जब वो मरने लगा तो एक बड़ा अजीब खतरा सामने आया, हो सकता है कुरान कोई मुहावरा इस्तेमाल कर रहा हो और आज से 100 साल बाद किसी को पता भी ना हो कि यह मुहावरा था। यह खतरा था कि नहीं? तो जिस तरह एक कैंपेन हुई थी ना कि हमें हदीस जमा करनी है, और एक कैंपेन हुई थी कि हमें आसार जमा करने हैं, इसी तरह एक कैंपेन हुई थी हमें अरबी जबान का असली मुहावरा जमा करना है। और वो असली मुहावरा जमा करने के लिए आप शहर में नहीं जा सकते थे, आप बगदाद नहीं जा सकते थे, आप शाम नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो बड़े बड़े शहर हैं और शहरों में मुहावरा मर जाता था। असल मुहावरा था सहरा का। तो अल अस्मई और शाफ़ई और ये बड़े बड़े उलमा, इन्होंने बहुत वक्त गुजारा है सहरा के अंदर, और जाकर वो कोई बच्ची किसी गांव में जो है, वो एक अस्मई का किस्सा है, अस्मई के बड़े अजीब अजीब किस्से होते हैं। अस्मई अरबी के माहिर थे, उन्होंने अरबी ज़बान पर तहकीक की, अरबी ज़बान को समझने के लिए उन्होंने सहरा में कई कई साल गुजारे, और उनके बारे में मशहूर है कि वो शक्ल के ज़रा और लहजे के और अपने मिजाज के ज़रा बदतमीज़ थे। तो वो किसी के घर में गए, कहते हैं खुद ही लिखते हैं, किसी के घर में गया, किसी ने मुझे देखा कि मैं वहाँ से नहीं हूँ, कबीले से गांव से नहीं हूँ, तो उसने मुझे अपने घर में बुला लिया। तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा तो याद नहीं, मुझे ये याद है कि मैंने इससे बदसूरत इंसान कभी नहीं देखा, उसके बारे में कहते हैं। लेकिन उसने मुझे अपने घर में बुला लिया, मैं घर में गया तो उसकी बीवी ने मुझे सलाम किया, तो मैंने एक नज़र देख कर नीचे देखा, क्योंकि मैंने उससे कभी कोई खूबसूरत औरत नहीं देखी, और मैंने इस्तिग़फ़ार की, और बाकी वक्त मैं उस घर में बैठा कंफ्यूज रहा कि ये कैसे हो गया। तो उसने मैंने जो मेरा मेज़बान था, मैंने उससे पूछा कहीं ये हुआ कैसे, तो उसकी बीवी हंसने लगी, कहती है आसा अन अहसना इला रब्बी व अना जज़ाउहु व आसा अन असअतु इला रब्बी व हुवा जज़ाई। हो सकता है कि ये अपने रब से बहुत अच्छा था और मैं इसकी जज़ा हूँ, या ये भी हो सकता है कि मैं अपने रब से बहुत बुरी थी और ये मेरी जजा है। तो खैर, अस्माई कहते हैं कि मुझे लफ्ज़ कुरान ने यूज़ किया है मताउल हयात दुनिया, मुझे मता समझ नहीं आ रहा था, ये मता है क्या चीज़। उनका फॉर्मूला क्या था कि वो जाके पूछते नहीं थे मता का मायना बता दो, क्योंकि मायना पूछोगे ना तो लोग अपनी तरफ से कोई बात कहेंगे, वो चाहते थे कि वहाँ बैठ के लोगों की बातें सुनते रहें, कोई ना कोई तो मता का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा ही, वो इंतज़ार में बैठे रहते थे कोई करे, कोई इस्तेमाल करे तो मुझे पता चले कि क्या है इसका नेचुरल यूसेज, क्या है ये अपने असल सियाक में कैसे इस्तेमाल होता है। तो थक हार के वो कहीं पहुँचे हैं तो एक बच्ची जो है वो बर्तन मांज रही थी झील के किनारे ब्रश से ना, तो बकरी आई और बकरी ने उसका ब्रश अपने मुँह में लिया और भाग गई। बच्ची रोने लगी अखज़ा मताई, उसने मेरा मता ले लिया। वो डॉक्यूमेंट करते हैं मता के मायने, जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है जिसका अपने अंदर कोई ज़ौक, उसके अंदर कोई मज़ा नहीं होता, लेकिन उसके लिए इस्तेमाल की चीज़ होती है, जो इस्तेमाल की चीज़ होती है वो मता होता है। इस तरह के नोट्स, इस तरह की कैंपेन शुरू हुई इस्लाम में, क्यों? क्योंकि कुरान सहरा की अरबी में नाजिल हुआ था, कुरान आज की अरबी, अलजज़ीरा की अरबी, यू नो तफसीर की किताबों की अरबी, बगदाद की अरबी, शाम की अरबी, दमिश्क की अरबी, इनकी अरबी में नाजिल नहीं हुआ था, और वो अरबी मुहावरे के एतबार से बदल रही थी। इसीलिए ज़रूरत थी पुराने मुहावरे को बरकरार रखने की, और पुराना मुहावरा पता है इस्लाम से पहले वाला मुहावरा है, और उस मुहावरे में सबसे ज़्यादा मशहूर चीज़ क्या थी पता है आपको? शेर। और शेर इसको कहते हैं शेर जाहिली। शेर जाहिली से क्या मुराद है? जाहिली दौर का शहर, और जाहिली दौर का शहर वो जहालत वाली बातें करता है, वो इस्लामी तहजीब तो उसके अंदर है नहीं। तो हमारी इस्लामी किताबों में बहुत सारे गैर इस्लामी शेर हैं, वो क्यों हैं? क्योंकि उनको इस बात का एहसास था कि अरबी मुहावरे को हमने किसी ना किसी तरह प्रिजर्व करना है। नाउ मैं ये सारी बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि कल जो हम काम शुरू करने वाले हैं ना, कल हम कुरान के कोई 8 मुहावरे देखेंगे, वैसे तो सैकड़ों मुहावरे हैं कुरान के अंदर, लेकिन जब तक आप उसका असल मुहावरा ना समझो ना कि वो बात कहाँ से, किस कल्चर से वो बात आई है और कैसे कुरान ने इस्तेमाल की है, तो आप उसका तर्जुमा पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये मुहावरा था असल में। इसकी एक तारीख है, इसका एक इस्तेमाल अरब के यहाँ था, उन्होंने इसको इस तरह समझा, अब हम इसको इस तरह समझेंगे। इसके बारे में अब आखिरी बात, और अब मैं आपको फारिग कर रहा हूँ इंशाल्लाह, वो ये है कि सवाल पैदा होता है कि अगर अरबी कुरान की इतनी पुरानी अरबी ज़बान में है तो यह हमेशा के लिए पैगाम कैसे है? क्योंकि अगर हमें इस तारीख में जाकर इसके मायने ढूंढने पड़ेंगे तो ये कैसे मुमकिन है कि यह हर दौर के लिए, हर सोसाइटी के लिए, हर सदी के लिए एक पैगाम हो? इसका आसान सा जवाब समझ लें आज के लिए, वो ये है कि आपको पता है ना मैथमेटिक्स में मैट्रिक सिस्टम है, और मैट्रिक सिस्टम में एक मीटर होता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर। तो वो जो मीटर है ना, वो एक ब्रॉन्ज या किसी मटेरियल का एक स्टैंडर्ड मीटर है जो शायद गालबन स्विट्जरलैंड या स्वीडन में एक म्यूजियम में रूम टेम्परेचर के अंदर रखा हुआ है, और दुनिया का जो भी रूलर बनता है वो उसके मुताबिक बनता है। ये मीटर है, ये स्टैंडर्ड है, इसको हमने टेम्परेचर रूम कंट्रोल में रखा हुआ है, टेम्परेचर कंट्रोल में, और इसकी बुनियाद पे सारे मीटर्स बनेंगे और सारे मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स बनेंगे। यानी आपको एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला ने कुरान को एक दुनिया की हिदायत के लिए आखिरी स्टैंडर्ड दिया है कि नहीं, तो उसकी बहुत ज़रूरत है कि वो उसमें कोई तब्दीली ना आए। अब तब्दीली ना आने में मसला ये है कि क्योंकि वो ज़बान में है, अरबी ज़बान में है, और हर ज़बान का एक ही मसला है, जैसे जैसे सदियां गुजरती हैं ज़बान के साथ क्या होता है, तब्दीलियाँ आती हैं। उर्दू में कितनी तब्दीलियाँ आई हैं? उर्दू में मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ कि उर्दू के अल्फाज में ज़्यादा इस्तेमाल करूँ। मेरे जो जो बहनोई हैं उनसे मैं एक दफ़ा रोड ट्रिप पर मैं जा रहा था, उनके साथ मैंने कहा आज हम लंबी ड्राइव है हमारी, रस्ते में सिर्फ उर्दू में बात करते हैं। मुझसे कहते हैं यार नुमान ये बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो वोकेबुलरी है ना उर्दू की वो बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो इंसान जो है वो फॉरगेट कर देता है। ये हुआ उर्दू के साथ। और उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किसी ना किसी तरह बच गई, लेकिन आसानी से नहीं बची। आपको उसका भी एक छोटा सा वाक्य बता देता हूँ। मैं जब इस्लामाबाद में था बचपन में, 6 महीने मैंने इस्लामाबाद में गुजारे हैं, मेरी पैदाइश मेरी और मेरी बाची की रहमतुल्लाह जर्मनी की थी, और फिर हमने यहाँ पर 6 महीने गुजारे। 6 महीने हम G81 में रहते थे इस्लामाबाद में, तो वहाँ हमारा दाखिला हुआ स्कूल में। मुझे उर्दू नहीं आती, बाजी को उर्दू नहीं आती, मैं किंडरगार्टन में हूँ, पहली जमात में है, और वो उनका ना एग्ज़ाम था, एक इम्तिहान था, तो टीचर ने कहा अगले दिन गत्ते लेके आना। आपको पता होगा किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। बाजी का मैंने भी सुन लिया था गत्ते लेके आना। वो आके कहती है मामा कल क्लास में गधा लेके आना है, और फिर मैं उसको उसकी मैं तस्दीक कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं नहीं मामा गद्दा लेके आना है, कल गद्दा लेके आना है। मुझे क्लास का मॉनिटर बना दिया था, आपके यहाँ होता है क्लास मॉनिटर है ना, मैं कराया खुशी खुशी, मैंने मामा से कहा मामा मुझे सारी क्लास का मंगेतर बना दिया। ज़बान में फ़र्क आता है, अगर आप उस कल्चर में ना हो आपकी ज़बान मुख्तलिफ होगी। तो मैं जो कल हम मुहावरे पढ़ेंगे ना, उसको हम कोशिश करेंगे समझने की कि इसका सही तर्जुमा मुहावरे के एतबार से क्या हो, उसमें खूबसूरती क्या है। तो कुरान ने असल में उस पुरानी अरबी के मुहावरे इस्तेमाल किए इसलिए क्योंकि सोसाइटी तो बदलती रहेगी लेकिन ज़बान वही रहे जो उस ज़माने की थी, ताकि अब वो ओरिजिनल ज़बान समझने के बाद जिस तरह मीटर का एक स्टैंडर्ड यूनिट है ना, अब उसका आप कहीं भी एप्लीकेशन कर लो, उसके ज़रिए से कोई भी आप इजाद कर लो, लेकिन स्टैंडर्ड तो वही रहेगा ना, इसीलिए कुरान का वही लिंग्विस्टिक स्टैंडर्ड है। और उसको अगर आप हर कल्चर के साथ बदलते रहते या उसको प्रिजर्व ना करते, तो आज जिस तरह हम कुरान समझ रहे हैं ना, वो उस ज़माने से बहुत मुख्तलिफ हो जाता। मुस्तामिर का लफ्ज़, मुस्तामिर अरबी में, पुरानी अरबी में, सहरा की अरबी में मुस्तामिर का लफ्ज़ था, जो किसी चीज़ को बनाना चाहे, तामीर करना चाहे, कुरान ने इस्तेमाल किया है वस्तअमरकुम फीहा, अल्लाह ताला ने चाहा कि तुम इस ज़मीन में तामीर करो। मुस्तामिर का लफ्ज़ आजकल की अरबी में, अखबारों की अरबी में और खुतबों की अरबी में मुस्तामिर का लफ्ज़ होता है, जो अंग्रेज़ ने हमारे साथ किया था वो मुस्तामरीन थे, कॉलोनाइजेशन को इस्तेमार कहते हैं। पूरी तरह से मुख्तलिफ लफ्ज़ है अरबी ज़बान का, कुरान एक मायने में यूज़ कर रहा है और बाकी सारी अरबी की किताबें आजकल किसी और मायने में यूज़ कर रही हैं, और इस तरह की सैकड़ों मिसालें हैं। इसीलिए अगर पुराना मुहावरा समझ ना आए और आप अरबी बेहतरीन बोल लो, इसका फिर भी ये मतलब नहीं होगा कि आपको कुरान समझ में आ गया। جس طرح آپ اچھی بھلی اردو بھی بول لو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غالب یا اقبال یا 200 سال پرانی کوئی تالیف آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ کچھ انٹروڈکٹری بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. کل بڑے خوبصورت محاورے پڑھیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.
1: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بیگینر یوٹیوب چینل ٹو واچ دی ریسٹ آف دس سیریز اینڈ مور گریٹ کنٹینٹ فرام استاد نعمان علی خان. کمنگ اپ نیکسٹ ٹائم آن آخری معجزہ.
0: پہلی دفعہ جب میں نے یہ کورس کیا میں نے کیلیفورنیا میں کیا تھا, لاس اینجلس میں. تو ایک لڑکا میرے پاس آیا کلاس کے بعد, 18 سال کا, بڑے غصے میں. کہتا میرے پاس لیکرز ٹکٹس تھے, میرے پاس یو نو فرنٹ رو سیٹس تھیں, وی آئی پی سیٹس تھیں, لیکن میری مدر نے کہا نہیں ہم یہاں پہ جا رہے ہیں ڈیوائن اسپیچ میں. دا ہول وے آئی واز کرسنگ یو. تو کہتا ہے بٹ یو نو آئی ہرڈ دس ٹو نائٹ, ٹوڈے از دا فرسٹ, آئی ایم 18 years old, ٹوڈے از دا فرسٹ ڈے آئی نو وائی آئی ایم مسلم. That's what he told me. So that made me really happy. کہ یہ ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے لوگوں کا. ہم مسلمان فیملی کے حساب سے تو ہیں, مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں, لیکن شعوری طور پہ مسلمان ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے, رائٹ. تو میری امید ہے کہ ان شاء اللہ اس کے بعد آپ کو بھی ایک نیا کنیکشن فیل ہوگا قرآن کے ساتھ.

तो ये कैसे हो कि शौहर और बीवी एक दूसरे के अंदर इस किस्म की खुशी पाएं, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा होता है। इसीलिए हब का लफ्ज इस्तेमाल किया, हब हब निकला है हिबा से, और हिबा अरबी में कहते हैं तोहफे को। हब लना मिन वहबा, हमें एक तोहफा दीजिए अल्लाह ताला। ये भी नहीं कहा हमें दीजिए, कहा तोहफा दीजिए। अब बाकी चीजों के लिए हम कहते हैं आतीना फिर दुनिया हसना, यानी कहते हैं हबलना फिर दुनिया हसना, दीजिए। लेकिन यहां देने के लिए भी खास देना, कैसा देना? तोहफा, यानी ये ऐसा तो ऐसी नेमत है जो बाकी नेमतों के मुकाबले में बहुत बड़ा तोहफा है, औलाद के अंदर और बीवी और शौहर के अंदर अल्लाह ताला आंखों की ठंडक दे। दूसरी बात क्या है कि इस तरह से मिसाल दी जा रही है बहुत मुख्तसर अल्फाज में कि बाहर की जो दुनिया है ना वो एक तूफान है। बाहर आप जाओ तो आपको हर तरह की मुश्किलात और ख़तरों का सामना करना है, और जैसे ही आप घर के अंदर आओगे ना, आप अपने शौहर के पास आओ या अपने बीवी के पास आओ, तो अब आप पनाह में आ गए, अब आपकी आंखों पर गर्मी नहीं लग रही, अब आपकी आंखें फाइनली ठंडक में हैं, अब आप पूरे पुरअमान में हैं, आप बिल्कुल हिफ्ज़ो अमान में हैं, आप यू आर कंप्लीटली सेफ। ये मकसद है कहने का। अब होता क्या है कि लड़ाइयां हो रही हैं घर में, तूफान बाहर नहीं है, तूफान कहाँ है? अंदर। और तूफान से बचने के लिए क्या करते हैं? मैं जा रहा हूं, वो बाहर जाके आंखों की ठंडक मिलती है, और अंदर जाने से पहले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फिर दरवाजे के अंदर या एक बड़ी सांस लेके फिर बैल बजाई। ये बताए अब जो सुकून था वो खत्म होने वाला है। इसीलिए ये दुआ अहम है। और फिर ये दुआ सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान नहीं बल्कि औलाद और वालदैन के दरमियान भी की गई, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो क्यूट होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे तो अनोइंग होते हैं शुरू से ही, लेकिन कुछ क्यूट होते हैं, मज़ा आता है उनके साथ, खेल कूद होती है, एक उम्र होती है जब वो आपकी सारी बातें सुनते हैं, फिर उनकी एक उम्र आती है कि वो बस आगे से जवाब देना शुरू कर देते हैं, उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी निकल आती है, तुम तो पूरे इंसान बन गए हो, तुम्हारी तो अपनी सोच है, अपने अपनी राय है, अपने ओपिनियंस हैं। और फिर वालदैन को पैनिक होता है, तो मेरी बातें नहीं मानते, ये तो आगे से जवाब देते हैं, इसकी अपनी राय क्यों है, ये पूरा इंसान क्यों बन रहा है, रोबोट क्यों नहीं बन रहा है ये जैसे तुम छोटे थे तो बहुत अच्छे थे। आपको कभी कभी सुनने को मिलेगा छोटे थे तो बहुत अच्छे थे, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया भाई। लेकिन आप अगर इस बात का अंदाज़ा करें कि जब इंसान बढ़ता है ना तो उसकी खुद मुख्तारी और आज़ादी, ज़हनी आज़ादी बढ़ती है, और उस वक्त इख्तिलाफ होना असल में ये नेचर का तकाजा है, ये तबीयत का तकाजा है, ये होना ही था और ऐसा होना चाहिए, और अगर ऐसा ना हो तो फिर उसमें नफ्सियाती मर्ज है। असल में वो नेचुरल है कि वो जब होगा, जैसे जैसे इंसान बड़ा होगा, लड़की या लड़का बड़े होंगे, तो उनकी अपनी राय बनेगी, उनके इख्तिलाफात होंगे, उनके अपने जज्बात होंगे, ये तो नेचर का हिस्सा है। लेकिन उन सारे इख्तिलाफात के बावजूद मेरी दुआ ये है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पनाह मेरे अंदर पाए और मैं पनाह उनके अंदर पाऊँ, और खुशी मुझे उससे मिले इख्तिलाफात के बावजूद, और खुशी मुझे उससे और उससे मुझसे मिले। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन। अब मैंने आपसे जो शुरू में बात की थी वो बार बार वापस आएगी, हर दुआ, अब आप हर दुआ जो कुरान में पढ़ेंगे ना वो फातिहा की दुआ की रूह में पढ़ेंगे। फातिहा में कहा था इहदिना सिरातल मुस्तकीम, दुआ की थी ना, लेकिन दुआ से पहले अपनी कमिटमेंट पहले बताई थी, इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन में किसने कमिटमेंट की है? हमने की, फिर दुआ की है। नस्तईन में भी क्या बात थी? पहले कोशिश मैंने करनी है, फिर अल्लाह ने मदद करनी है। जो भी दुआ आप कुरान में पढ़ेंगे पहले से अंदाज़ा कर लो, पहले मैंने अपना काम करना है, उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से मदद आनी है। अगर मैं कोशिश नहीं करूँगा कि मेरी और मेरी बीवी के दरमियान कि उस रिश्ते में मोहब्बत ज़्यादा बढ़े, एक दूसरे पर एतमाद ज़्यादा बढ़े, हम एक दूसरे के अंदर पनाह पाएँ, अगर मैं इसकी तरफ कोशिश या काम नहीं कर रहा तो फिर इस दुआ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने अपना हिस्सा नहीं किया। बच्चों के साथ ताल्लुकात सिर्फ दुआ से फिक्स नहीं हो जाएंगे, आपको अगर ख़ुद कम्युनिकेशन नहीं करनी उनके साथ, उनके साथ आपने ख़ुद खुलकर बात नहीं करनी, उन समझदार नहीं कि उनके जज्बात क्या, और अगर पेरेंट्स आपके पेरेंट्स आपके साथ अच्छा ताल्लुक नहीं है, कुछ आप में से जो है 30-40 साल के भी हो गए हो और आपके वालदैन के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, इस दुआ की वजह से आप क्या सीख रहे हो? अब आपको उनमें जाके पना लेनी होगी और उनसे पूछना होगा कि भाई हमारी जो है लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, आपने कभी सोचा क्यों होती हैं? फिर वो कहेंगे तुम बदतमीज़ हो इसलिए होती हैं, इसमें क्या

0: मुश्किल है। तुम अगर अच्छे होते तो कभी लड़ाई ना होती, कभी कोई झगड़ा ना होता। तुम क्या समझ लो झगड़ा हमारी वजह से, तुम्हारी वजह से होता है और फिर दोबारा झगड़ा शुरू हो जाएगा, राइट? तो आपको फिर समझ नहीं आता कि आप ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको ख़त्म कैसे करें। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हर एक की ज़िंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर होता है। मेरे साथ भी हुआ है, मेरे पेरेंट्स के साथ भी हुआ है, आई लव दैम। लेकिन उसको तोड़ने के कुछ तरीके हमें सोचने पड़ेंगे, उसके बारे में कुछ सोचना पड़ता है। मैंने एक अपनी मदर के साथ किया था, इट हेल्प माई रिलेशनशिप विद माई मदर सो मच सो मच। मैंने उनसे पूछना शुरू किया, जब आप छोटी थी तो आपकी लाइफ कैसी थी, आप क्या करती थी, आपके दोस्त कैसे थे, आपकी लड़ाइयाँ किससे होती थी, खाला से कैसी लड़ाइयाँ होती थी आपकी। और जब जितना आप उनकी लाइफ में दिलचस्पी लोगे ना, जितना आप किसी के बारे में उनको सुनाना नहीं उनसे सुनना चाहोगे, क्योंकि हर एक की शिकायत क्या होती है, मेरी बात ये सुनते ही नहीं है, राइट? मेरी बात सुनते ही नहीं है। बच्चे कहते हैं मेरे पेरेंट्स मेरी बात नहीं सुनते, पेरेंट्स कहते हैं बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, बीवी कहती है शौहर ये तो मेरी बात नहीं सुनते, शौहर कहता है इसको तो मेरी बात सुनने का कोई शौक है ही नहीं, ये मेरी बात सुन के क्या करे, इसको तो बर्दाश्त नहीं होगी मेरी बात। कोई किसी की बात सुन नहीं रहा, लेकिन सुनाने के बजाय आप किसी से कहें आप मुझे सुनाएं अपने बारे में, आपने खुद जाके इनिशिएट किया ना, तो ये कुर्रत आयुन का एक हो सकता है कि ये एक स्टेप हो। ये साइड पे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन एक नसीहत है मेरी तरफ से ही कि हो सकता है उससे आपके घरों में आपके बच्चों के साथ और आपके स्पाउसेस के साथ एक छोटा सा रास्ता खुलना शुरू हो और इस दुआ की तरफ हम करीब आते चले जाएँ। अच्छा, वकालत इमरात फिरऊन कुर्रत आयुन ली, क्या प्यारी बात की थी उन्होंने। आसिया ने कहा था जब मूसा अलैहिस्सलाम पानी से टोकरी में होते हुए फिरौन के महल तक पहुंचे और उन्होंने बच्चे को उठा लिया, मालूम था कि यह बच्चा बनू इसराइल से है, उसकी रंगत से पता चल रहा था ये बनू इसराइल से है। इसका मतलब है कि इसको ऑफिशियली क्या करना चाहिए, कानून क्या कह रहा है, कत्ल कर देना चाहिए उसी वक्त। और वो बच्चे को लेकर फिरौन के सामने ले गई, और फिरौन उस वक्त अपने जनरलों के साथ या अपने कमांडर्स के साथ क्या डिस्कशन कर रहा होगा, कितने मर गए, कितनी सड़कें रह गई, कितने कत्ल हो गए। और बीच में मीटिंग के दौरान आवाज़ आती है, वो भी बच्चों को मारने की बात कर रहे हैं और बेबी की आवाज़ आ गई, और माँ ने भी क्या किया, उसके सामने ले आई, आसिया माँ तो नहीं अडॉप्टिंग मदर, सामने ले आई और सामने लेके कहा कुर्रतु आइन ली, ये आंखों की ठंडक बनेगा मेरे लिए, मेरे लिए, उनके लिए नहीं कहा, फिरौन के लिए नहीं कहा, अपने लिए कहा। कुर्रतु आइन से क्या मुराद है, मैंने दो बातें कही थी, इतनी खुशी के आंसू आए, क्यों, क्योंकि वो बेचारी गर्म आंसू तो रोज रोती है, फिरौन से शादी है, उसको भी पता है कितनी डिप्रेस है। अब लोग बढ़ा चढ़ाकर अपनी सिचुएशन बताते हैं, यार मैं किस फिरौन के साथ फंस गया हूं, वो वाकई फिरौन के साथ फंस गई हैं, राइट? तो वो तो है डिप्रेशन में, तो अब वो कह रही है आपको भी बताया आप कौन है, लेकिन कम अज कम मुझे आंखों की ठंडक इससे तो मिलेगी, इसको मेरे पास रहने दे, मुझे खुशी आएगी इससे, पूरा तो आईने ली। और दूसरी बात थी कि वो एक तूफान के अंदर रह रही हैं, और उस तूफान से पना उन्हें कब मिलेगी, जब वो इस बच्चे के साथ होंगी। फिर ये भी कह दिया साथ में, और लगता है कि आपको भी इस बच्चे की जरूरत है, वलक आपके लिए भी। यानी मालूम होता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन ने देखा ना, तो उसके चेहरे पे भी कुछ फर्क आ गया, और उन्होंने नोट किया कि ये तो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये तो लगता है इनको भी पसंद आ गया है, तो उन्होंने वलक का इजाफा कर दिया। शुरू में नहीं कहा था कुर्रतु आइनिन लना, ये हम दोनों के लिए आंखों की ठंडक, ये ऐसे नहीं कहा, अपनी बात की थी, और फिर फिरौन का भी इजाफा किया वलक। ओके, फला, ये बड़ी प्यारी आयत है, फला तअलमु नफ्सुन मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुनिन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। किसी इंसान को नहीं पता, किसी नफ्स को नहीं पता कि क्या आंखों की ठंडक उसके लिए छुपाई गई है, कहां से, कैसे, कब, कौन सी ऐसी चीज है जो उसको रिलीफ देगी, उसको पनाह देगी, उसकी मुसीबतें एकदम से गायब हो जाएंगी, या कैसी ऐसी खुशी है, उसको गुमान भी नहीं था कि ऐसी खुशी हो सकती है उसकी जिंदगी में, ऐसी चीज उसके लिए अल्लाह ताला ने कहा किसी नफ्स को नहीं पता, किसी इंसान को नहीं पता उसकी खुशी कहां से आएगी। इसमें बहुत सारी हिकमतें शामिल हैं, और एक हिकमत यह भी शामिल है, हमें पूरा एतमाद होता है, हमें पता होता है हमारी खुशी कहाँ से आएगी, मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये नहीं होगा तो मैं खुश नहीं हो सकता, ऐसा ही होता है ना, और इंसान पीछे पड़ जाता है एक एक गोल के पीछे, ये मिल जाए मुझे खुशी आ जाएगी, और वो अगर वो ना मिला जिंदगी बर्बाद। अल्लाह ताला इस चीज़ से हमें छुटकारा दिला रहे हैं, इस सोच से कि हम किसी एक चीज़ को पकड़ के अपने आप को पागल कर दें और कहें खुशी तो इसी में है वरना खुशी हो ही नहीं सकती। अल्लाह कह रहे हैं किसी नफ्स को नहीं मालूम कि उसकी आंखों की ठंडक, उसकी खुशी के आंसू किस चीज़ में छुपे हुए हैं, लेकिन छुपे हुए ज़रूर हैं। और फिर कहा जजा अम बीमा कानू यअमलून, जो जो अमल वो करते रहे हैं उसकी जजा के तौर पे उनको कोई खुशी आने वाली है। यानी इसमें यहाँ पर इख्तिसार नहीं किया कि कहा कि ये आखिरत में ही होगा, जब अल्लाह ताला खास ना करे ना कि ये खास आखिरत के लिए है या खास दुनिया के लिए है। तो उमूमुल लफ़ यदुल्लु अला उमूमुल माना, जिसमें अल्लाह ताला ने कैद नहीं डाली उसमें हम कैद भी नहीं डालते, यानी ये खुशी इसका इशारा दुनिया की तरफ भी हो सकता है और आखिरत की तरफ, दोनों को शामिल किया जा सकता है। ठीक है।
1: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
0: Koi aata hai Rasool Sahib ke paas kehta hai you know ubayuka ala salatain, main aapko bayat dene ko taiyar hu, yani musalman hone ko taiyar hu, namazein maine do padhni hai, paanch nahi padhni, maine do padhni hai. Kya karenge Rasool Sahib? Hum mein se koi hota to kehta inna deena indallah al-islam, अल्लाह के यहाँ दीन जो है ना ये मुकम्मल अपने आप को आपने सरेंडर करना होता है, इसमें कोई डिस्काउंट प्रोग्राम नहीं है, कोई निगोशिएशन नहीं है, या पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो या दफा हो जाओ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ले ली, चलो ठीक है दोनों बाजों के लिए। हम सहाबा हैरान, ये क्या हो गया, या कोई वाकई कोई डिस्काउंट प्रोग्राम है? तो उन्होंने कहा नहीं, जब नमाज की लज्जत आएगी तो खुद ही पढ़ लेगा।